0: छोड़ मेरी साड़ी।
1: छोड़ मेरा हाथ।
0: मैं कहती हूँ छोड़ मेरी साड़ी, छोड़ मेरी साड़ी।
1: पहले मेरा खत वापस करो।
0: क्यों?
1: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र पढ़ती हो?
0: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र लिखते हो?

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

आज संगीत देखा ज्यादा जाता है और सुना कम। बात कर रहा हूं सिर्फ संगीत की जो सिर्फ सुना ही जाता है और जिसको सुन सुनकर मैंने बहुत सीखा है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सलिल चौधरी ने सरल मुकेश की आवाज को जो गंभीर रूप दिया, योगेश के कमाल गीतों से महसूस होता है।